क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: रेडियो फाजा फॉर ऑल योर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट नीड्स।
7: रेडियो फाजा।

0: एक साथ। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: Attention!
9: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
10: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
11: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
10: सलासा ट्यूशन सेंटर?
11: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
10: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
11: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
10: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
12: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
13: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पेशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-201-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

ना कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

न कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

सपनों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

मलकुना तुली केना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: से ज़्यादा खुश अखलाक हो जाता है। डेफिनेटली उसके पास फिर गुस्सा करने का कोई चांस बाकी नहीं बचता। इसी कोट को लेके आगे चलेंगे, हमारे दरमियान हाइल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड फॉर 97.8।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
1: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
1: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
1: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
1: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त दा मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.21 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम, जी गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। ऐप पे आप कैसे डाउनलोड करेंगे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ऐप पे जाने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जनाब गूगल प्ले से या प्ले स्टोर से रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल, ये लिखेंगे आप सर्च बार में, उसके बाद

आपके पास एक कह लें कि पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन या पीच कलर में लिखा फजा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज़ ठहरेगी आपकी नज़र। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए सामने जीवकार रबी लवल का खूबसूरत सा महीना है। रिसेंटली जनाब आज हमारी एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट रबी लवल के हवाले से वो भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म स्पेशली यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा जी बिल्कुल खूबसूरत से कुछ कलाम है मेरे पास जो आपकी समात हुई नज़र करना चाहता हूँ। कहते हैं कि वह हजाब हक में चला गया, वो हिजाब हक में चला गया, बलागल उला भी कमाल ही। ये जो वो हिजाब हक में चला गया, बलागल उला भी कमाल ही, ये जो दो जहां में नूर है, कशफत दुजा भी जमाल ही। ये जो किबरिया का कलाम है, हसुनत जमी व खिसाल ही, ये किसा तले हैं जो पंजतन सल्लु अलैहि वाले ही। सामने जी वकार खूबसूरत से लम्हात हैं, खूबसूरत से लोग हैं हमारे पास। और अक्सर जब रबी अव्वल शुरू होता है ना तो एक बड़ा खूबसूरत सा कलाम है वो फिजा में मुअत्तर होता है, सलाम उस पर के जिसमें जिसके घर चांदी थी ना सोना था। मैं कहता हूँ कि वो किबरिया, वो आका सलातम की ज़ात, वो सरकार दो जहाँ की ज़ात जिनके पास सब कुछ था, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद ना होना इस बात का इशारा करता है, इस बात की दलील देता है कि हमने किस तरह ज़िंदगी को बसर करना है। बड़ा खूबसूरत सा कलाम है। शायर कहता है कि फराज़ अर्श आज़म जो उसका एक बिछोना था, जिसे तकदीर कहते हैं, वो उसका एक खिलौना था, बुजर और फिजा जिसके घर में काम करते थे, तुझे किसने कहा है कि उसके घर न चांदी थी न सोना था। ये खूबसूरत से जो आशिकों के कलाम होते हैं ना, जो शकान मुस्तफ़ा होते हैं, जो इतात रसूल को, इतात खुदावंदी को अपने दिल से बांध के रखते हैं, ये उनके खूबसूरत से कलाम होते हैं। जैसा कि बलागल उला बे कमाल ही, शेख सादी का बड़ा खूबसूरत सा कलाम है। और जब इसको हज़रत अल्लामा शेख सादी ने तहरीर किया तो बड़ा सबक अफरोज, बड़ा एक खुशनुमा अफरोज़ एक वाक़िया हमें मिलता है कि हज़रत शेख सादी ने जब ये कलाम लिखा ना कि बलागल उला बे कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमी व खिसाल ही, तो फिर जो आखिरी मिसरा था वो कंप्लीट नहीं था हो रहा। तो सरकार की बारगाह में हाजिर हुए सोते हुए, खुद तो सो गए हजरत शेख सादी, लेकिन उनकी तकदीर जागी। और कमाल जाएं, कुर्बान जाएं आपकी तकदीर पे, जब तकदीर जागी तो आप सलातुस्सलाम का दीदार हुआ और आप सलातुस्सलाम की ज़ात ने कहा, शेख ये तो बता कि तूने मेरे लिए लिखा क्या है। कहा, हुजूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप सलातुस्सलाम की ज़ात ने कहा कि आप बता दीजिए आपने क्या लिखा है। तो आप हज़रत शेख सादी ने कपकपाते हुए लहजे के साथ, कपकपाते हुए होंठों के साथ कुछ अल्फाज अपनी रूह की तस्हीर से जमा किए और फिर उनको अपने लबों पे सजाते हुए कहा कि बलागल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमी व खिसाल ही। ये कह के हज़रत शेख सादी खामोश हो गए। और जब हज़रत शेख सादी खामोश हुए तो फिर आप सलातुस्सलाम की लब मुबारक ने जुम्बिश खाई, वो फूल, वो गुलाब की पनखड़ियाँ जो अल्फाज बनकर आप सलातुस्सलाम के लबों से बाहर निकली वो ये थी कि अरे शेख तू लिखता क्यों नहीं कि सल्लू अलैहि वालैहि। तो फिर इस तरह ये खूबसूरत कलाम, बलागल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमी व खिसाल ही, सल्लू अलैहि वालैहि, ये कलाम कम्प्लीट हुआ। सामिन खूबसूरत सी महफिल लोग अक्सर सजाती हैं। मिलादुलनबी का खूबसूरत सा महीना है, जुमातुल मुबारक का बबरकत दिन है। उठें अपने रूह को पाक करते हुए कुछ खूबसूरत से कलाम सुनते हैं। इसी तरह कसीदा बुर्दा शरीफ का खूबसूरत सा कलाम मेरे पास मौजूद है आतिफ असलम की आवाज़ में। सुनिए इस खूबसूरत से कलाम को, इस कलाम के उस पर रहती है आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 FM एंड योर होस्ट नासिर खान। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्यूटीफुल कलाम।

उसमें से हमने जोखिम करके वो मेहनत निकालनी है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात हमारे रूबरू हो द डे ऑफ द जजमेंट, तो हम ये चीज़ सोच सकें, हम चीज़ को अपने अंदर उतार सकें, हम इस चीज़ को बता सकें कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करके आए, हमने इसार का वो जज्बा अपने अंदर पैदा किया कि हमने अपने बहन भाई का, अपने भाईचारे का, एक दूसरे का बेहद ख्याल रखा और या अल्लाह हमने कोशिश की कि हम अच्छी तरह से उस लेवल को कंप्लीट कर सकें, हम तेरे बुरगजीदा बंदों में शामिल हो सकें, हम तेरे पसंदीदा बंदों में शामिल हो सकें, हम उस जगहों पे, उन राहों पे चल सकें जिसको तूने अपना सिरातुल मुस्तकीम बताया है, ना कि उन पर जिस पे तूने अपना गज़ब किया। गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, बताने वाली वो ज़ात, वो दिखाने वाली वो ज़ात जो हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात ही रहती है, वो वहदानियत की तस्वीर, तौहीद का वो चर्चा, तौहीद की वो कायलनेस चीज़, तौहीद की वो खूबसूरत सी उड़ती हुई, वो खूबसूरत सी एक कह लें कि बेशुमार सी, जिनमें बहुत सारी काबिलियत, बहुत सारे एहसास, बहुत सारी खूबसूरती आती है, वो पंछी, वो ऐसे उड़ते हुए पंछी जो हर वक्त फ़िज़ा में मुअत्तर रहते हैं, फ़िज़ा को खुशबूदार करते हैं, और उन पंछियों की अनगिनत ताकत, उन पंछियों की अनगिनत पर जो रहमत की सूरत में हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा उनको हमारे ऊपर कायम और दायम रखे। आप लोग हमारे साथ रही, ये खूबसूरती कम्युनिटी जो हमारे नॉटिंघम शायर की है, ये खूबसूरती कम्युनिटी हमारे साथ रही, अलावाजी जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है जो हमारे साथ चलते हैं, जो कोऑपरेट करते हैं और जिनको हम प्रमोट करते हैं, अगर आप भी किसी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आज ही रब्ता कीजिए 01157100971 पे मैसेज करके। सो स्टे ट्यून विद फज़ा 97.1 FM एंड डैप, योर होस्ट नासिर खान इज़ राइट हियर। खूबसूरत एक और कलाम जिसको मैं अक्सर शामिल करता हूँ अपने प्रोग्राम में, ये भी आतिफ असलम का खूबसूरत कलाम है, दुआ करते हैं कि हुजूर कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स ऑफ रेडियो फजा 97.1 एफएम हिट्स योर होस्ट नासिर खान। डेफिनेटली जनाब लाइव शो है गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का और आपका मेजबान नासिर खान आपके साथ मौजूद है। 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप उससे रब्ता करते हैं। रब्ता करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिए और एहसास दिलाइए अपने होने का। जुमातुल मुबारक का खूबसूरत सा दिन, खूबसूरत सा कलाम जनाब आपकी समातों की नज़र था और भी कलाम मेरे पास मौजूद हैं आपकी फरमाइशों के ज़ेर असर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मज़ेदार सी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहते हैं कि मुश्किलों का आना ना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उनमें से मुस्कुरा के बाहर निकल जाना इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। तो जनाब आर्ट ऑफ लाइफ सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले रुजू करना पड़ता है आप सलाम की ज़ात की तरफ, हमें रुजू करना पड़ता है अल्लाह ताला की उस हस्ती की तरफ जिस हस्ती ने हमें इस दुनिया में भेजा किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी गोल के पीछे। और जब वो गोल वो मकसद हम हासिल करते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास रहता है, हमें इस चीज़ का पता रहता है कि हमने क्या बोया और क्या पाया, यानी क्या बोया और क्या काटा। अक्सर लोग इस बात का शिकवा करते हैं, इस बात का गिला करते हैं कि हमने तो फलां बंदे के साथ बहुत अच्छा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। गर्ज आप देखें ना, किसी भी आदमी को देखें वो यही कहेगा, लेकिन उन हज़ारों में से एक ऐसा आपको मिलेगा जो आपको ये कहेगा कि यार मेरे साथ तो हर वक्त अच्छा ही हुआ है, मेरे साथ तो हर वक्त बेहतर ही हुआ है। वो कभी कंप्लेनिंग पोजीशन में नहीं आएगा, वो कभी आपको ये नहीं करेगा कि अगर आप कोई छोटा है या उसका कोई डिफरेंट लेवल है या एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत और अपनी उम्र की बिना पे वो आपके साथ लड़ पड़े, झगड़ पड़े या कुछ करे। लेकिन उसके साथ साथ वो सिर्फ क्या करता है, वो इन्फॉर्म करता है, वो आपको बताता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत कम आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो कंप्लेनिंग नहीं होते, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दिलो जान के साथ फुल लॉयलिटी के साथ आपको वो चीज़ें दे सकें जो चीज़ें आपने पहले जन्म में या पहली ज़िंदगी की लाइफ में नहीं देखी, नहीं काटी। और फिर ऐसे ही वो लोग होते हैं जो सरकार के मंगते बनते हैं, जो सरकार के दर पे पहुंचते हैं, जो सरकार का जितने भी ज़राह करम उनकी जो चीज़ें हैं, सरकार की जो खूबसूरत बातें हैं, सरकार के जो खूबसूरत नगमे हैं वो उनको सुनते हैं। ये सारे लोग बहुत ही कम, बहुत ही रहस्यमाई होते हैं, बहुत ही कम सोच वाले होते हैं और ये ज़्यादा सोचते नहीं, बेसिकली वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं, काम करके दिखाने के कायल रहते हैं। और ऐसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत सा दिन लेके आते हैं, बहुत खूबसूरत सा चारा लेके आते हैं, बहुत खूबसूरत सी लहजे लेके आते हैं, और उन्हीं लहजों को लेके इंसान एक खूबसूरत सी लाइफ बनाता है। वो लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और उस लाइफ में रहना इज़ आर्ट ऑफ लाइफ, बेसिकली ये चीज़ होती है। तो सरकार के मंगते हर तरफ मौजूद होते हैं, खूबसूरत सा कलाम मेरे पास मौजूद है, ज़बरदस्त से हमारे सिंगर हैं जनाब, बहुत ही प्यारे से और बहुत ही जबरदस्त। इन्होंने हमेशा कोशिश की है उभरते हुए, बेसिकली ये एक सिंगर हैं मुल्क पाकिस्तान के, औसाफ फतेह अली खान जी, राहत फतेह अली खान साहब के साहबजादे हैं गालिबन ये, और बहुत ही खूबसूरत सा कलाम सरकार का मंगता। सुनिए इस खूबसूरत से कलाम को, इस कलाम के ऊपर रहती है आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून विद फजा 97.1 FM एंड डैब एंड योर होस्ट विल बी राइट बैक।

क्या बात है, उनके अलावा कौन नियाजी अपना लगता है। खूबसूरत सा कलाम जनाब उस्ताद औसाफ फतेह खान की आवाज में आप समाप्त कर रहे थे। जनाब एक खूबसूरत सा कलाम एक और मेरे पास मौजूद है जिसकी हर वक्त मेरे पास एक फरमाइश रहती है और फरमाइश भी जुमा मुबारक के दिन रहती है। उस्ताद नुसरत अली खान साहब की खूबसूरत आवाज में प्रोग्राम है बल्कि कलाम है तुम एक गोरख डंडा हो। सुनिए इस खूबसूरत से कलाम को, इस कलाम के उस पार रहती है आपसे मुलाकात, लेकिन मुलाकात मेरी आपसे नहीं रहेगी क्योंकि समय खत्म हुआ जाएगा इस प्रोग्राम का, तो अपने मेजबान नासिर खान को दीजिए इजाजत। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम से कल मुलाकात रहेगी आपसे, डेफिनेटली सैटरडे है, कुछ वीकेंड वाइब्स लेके आएंगे, कुछ खूबसूरत सी बातें होंगी। तो मैं गोरख दंदा हो, एंजॉय कीजिए नुसरत अली खान साहब का खूबसूरत सा कलाम। हियर इज योर होस्ट नासिर खान इज साइनिंग आउट। गुड बाय गुड बाय गुड बाय नॉटिंघम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।

यह कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

दुनिया के किस कोने में है आप मौजूद और क्या करते करते ट्यून कर रहे हैं। सो वेल लिसनर्स, अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अभी तक हैं आप सुस्ती या फिर काहली में मुब्तला तो बिस्तर को छोड़ दीजिए और सुस्ती और काहली को कर दीजिए साइड पे, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा और एनर्जेटिक सा डे आपका मुंतजर है। सो डियर लिसनर्स, ये तो हो गया कि किस तरह से आप अपनी कीमती राह का इजहार हमसे कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे www.radiofaza.com.uk, ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप से जुड़ी हर तरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला, या फिर रेडियो फजा 97.1 FM पर कौन से न्यू इवेंट्स हैं होने वाले, या फिर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी भी बिजनेस की प्रमोशन करवाएं, या फिर इस हवाले से आप की कोई भी क्यूरी हो, सो आपको वो तमाम तर मालूमात मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। सो जैसे ही ये डिस्प्ले हो जाए बस आप समझ लीजिए कि हमारी एप्लीकेशन है अब आपके सामने। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लीजिए इसको इंस्टॉल और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने बारी बारी करके आपसे सभी शेयर कर दिए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। सो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे, या फिर अगर अभी तक आपने इस दिन का आगाज़ नहीं किया होगा तो आई फील लाइक समहाउ आप प्लानिंग कर रहे होंगे कि किस तरह से आज के इस दिन को खूबसूरत बनाया जाए, क्या क्या मोटिवेशनल काम किए जाएँ, या फिर किस तरह से अपने इस दिन को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है और हर घड़ी हमें यही सोचना चाहिए कि हमारा आने वाला वक्त किस तरह से अच्छे कामों में सर्व हो। क्योंकि अगर हम हल किसी भी सुस्ती या फिर काहली में मुब्तला रहेंगे तो हमारा बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो जाएगा, और जैसे आपको मालूम है कि जो वक्त एक बार हाथ से निकल जाए वो कभी वापस नहीं आता। सो वेल लिसनर्स, अगर आज के दिन के हवाले से प्लानिंग करते हुए आपको कोई भी समस्या पेश आ रही है, सो डोंट वरी, मैं हूं ना, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर और मुझे बता सकते हैं कि आपके आज के हवाले से क्या प्लान्स हैं और क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दूँ, साथ ही साथ आपकी उस समस्या को समझने की कोशिश करूँ। समहाउ होता है ना, हमारा दिल करता है कि कोई इंसान हमें सुने, हमें समझे, या फिर वो खुद को हमारी जगह हमारी सिचुएशन में रख देखे। सो अगर आपको भी ऐसा फील होता है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान की है कमी, सो रेडियो फजा 97.1 FM आपकी इस कमी को जरूर करेगा दूर। सो चलिए सर, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और जिस तरह से मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि हर दिन का आगाज़ तभी मुमकिन होता है जब आप एक हेल्दी एनर्जेटिक मील लेते हैं। अब हेल्दी इटसेल्फ के आप कुछ भी हैवी मत लें, लेकिन कुछ लाइट सा ले लें, लेकिन अच्छा सा ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर आने वाला नया दिन हमारे साथ बहुत सारे नए चैलेंजेस को लेके आता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, ऑफिस जाएँ, बिजनेस या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी जहां आपको डेली बेसिस पर है जाना, वहां जाएं और आप पूरा दिन चुस्त रहें, या फिर आप हर काम दिल लगा के करें, सो उसके लिए आपको बहुत सी एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है एक अच्छे हेल्दी मील से। और वैसे भी माहिरीन का है कहना कि हमेशा ब्रेकफास्ट लाजमी किया करें, क्योंकि इट्स फेयर इनफ कि आप दिन का खाना स्किप कर दें, क्योंकि वो इतना मैटर नहीं करता, बट हमेशा सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। सो इसे कभी भी स्किप मत किया करें और लाजमी किया करें।

तो ये तो लिसनर्स की तो बात होगी उन सभी लिसनर्स की जिन्होंने अभी तक अपने दिन का आगाज नहीं किया, लेकिन अगर आपका शुमार उनमें से होता है जिन्होंने अभी तक अपने इस दिन का आगाज कर लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब आप अपने ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर बिजनेस की तरफ हैं रवा दवा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सफर बन जाए मजीद खूबसूरत, मजीद यादगार और खूबसूरत यादों से भरपूर, सो उसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, आपको बस हमें ट्यून करना है। सो जी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और चाहते हैं हमें ट्यून करना, सो फजा डैप के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकती हैं। सो दी लिसनर्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का है इंतज़ार, जल्दी से कर लीजिए हमें ट्यून और इस सफ़र को बनाइए और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा यादगार। लेकिन साथ में आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं सो बी सेफ एंड बी केयरफुल, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। सो जब भी ड्राइव कर रहे हो तो ख्याल रखा करें और पूरी त्वचा से आराम आराम से गाड़ी चलाया करें। यह जो आजकल जेन ज़ी ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जस्ट शो ऑफ रैश ड्राइविंग करते हैं या इस तरह की कोई भी हरकत करते हैं, सो इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होता है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। जिंदगी बहुत कीमती होती है, सो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस तरह के स्टंट्स करके अपनी जिंदगी को खतरे में डालना चाहिए। जिस तरह से मैं कहती हूँ कि एक अच्छे दिन का आगाज एक अच्छे ब्रेकफास्ट से होता है, ठीक उसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज भी एक खूबसूरत से सोलफुल से कलाम से होता है। सो आइए मिलकर सुनते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलाम, कलाम भी वो जो आबिदा परवीन साहिबा की आवाज़ में हो। सो ये कलाम मेरा तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा और सुनने के बाद आपको काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील होगा। सो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा कलाम, आप सभी से मुलाकात होगी कलाम के उस पर, तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है।

राइट जी लिसनर्स, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो जी चलते हैं आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। सो स्टे ट्यून विद अस।

नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदी। चेतु लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। चेतु लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम जो कि था आपदा परवीन साहिबा की आवाज में? अच्छा, बेसिकली इस कलाम के कुछ लिरिक्स हैं जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक रियलिटी बेस्ड हैं। अच्छा, आजकल के दौर में जितने भी हम कलाम सुनते हैं या फिर मोस्टली म्यूज़िक सुनते हैं, तो आप सब ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि उनके लिरिक्स काफ़ी इमेजनरी होते हैं। यानी कि जब हम वो सुनते हैं तो हम एक किस्म के डिल्यूजन में चले जाते हैं या फिर लाइफ रोमेंटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, आपदा परवीन साहिबा के तमाम तर कलाम्स की जो खास बात मुझे लगती है वो ये है कि उनके तमाम तर लिरिक्स रियलिटी बेस्ड होते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी जब भी उनका कलाम सुनता है तो हम उन लिरिक्स को अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अब जो हमने ब्रेक से पहले कलाम सुना उसमें एक लाइन थी, पीजा अयाम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। सो ये काफ़ी रिलेटेबल है। इस दुनिया में आप सभी ने भी देखा होगा कि बाज़ात लाइफ में ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं जहां बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। सो इस लिरिक्स के अकॉर्डिंग के उन तमाम तर मुश्किलात के बाद हमें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि गम की शाम के बाद एक उजाले का दिन भी ज़रूर आता है। और भी इस तरह के बहुत सारे लिरिक्स हैं, अगर आप उनके बाकी तमाम तर कलाम सुने तो आपको ज़रूर रियलाइज़ होगा। वेल लिसनर्स, क्या आपने आज से पहले कभी भी कोई भी कलाम सुनते हुए इस चीज़ को गौर किया? लेकिन अगर आपने अभी तक इस चीज़ को नोटिस नहीं किया तो आज मेरे कहने पर आप कोई भी प्यारा सा सूफी कलाम लगाइएगा और उसे ज़रूर सुनिएगा, और सुनने के बाद आप भी वही चीज़ नोट करेंगे जो चीज़ मैंने नोट की है। वेल लिसनर्स, जैसे कि है आप सभी को मालूम कि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के हवाले से ये कि तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी में फ्राइडे एक बहुत ही खास मोतबर और स्पेशल डे समझा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि फ्राइडे इज़ अ रिमाइंडर, एक ऐसा रिमाइंडर जहां आप अगर रास्ते से भटक चुके हैं, भूल चुके हैं अपने मकसद को, अपनी मंजिल को, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका आने का मकसद क्या था, या फिर आप किस इरादे से आए थे, और आप इस दुनिया की भीड़ में इस कदर मगन हो जाते हैं कि आपके माइंड से वो तमाम तर थॉट्स निकल जाते हैं, आप अपने असल मकसद को भूल जाते हैं, और अगर ये कहें कि इस दुनिया की रंगीनी में खो जाते हैं तो गलत नहीं होगा। सो फ्राइडे एक रिमाइंडर होता है हम सभी के लिए, जो हमें रिमाइंड करवाता है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सो हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम अपने गॉड की वर्शिप करें, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, इस मुकाम तक पहुंचाया, हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा। जी तो लिसनर्स, क्या आप सबने कभी गौर की कि हमारे पास किस कदर खूबसूरत प्यारी नेमतें मौजूद हैं? हमारे पास वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जिसके लिए हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा दुआ करता हो। हमारे पास इतनी खूबसूरत आंखें हैं, इतनी खूबसूरत बाल हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी मर्जी से आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्या ये ब्लेसिंग्स कम हैं हम सभी के लिए? वेल, हमारे गॉड ने जितनी हमें ब्लेसिंग्स अता की हैं, अगर हम उस पर हमेशा सारी ज़िंदगी उनका शुक्र अदा करें तब भी वो कम होगा। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि बस दुनिया में कहीं खो जाते हैं, हमें दुनियावी ज़िंदगी की इस कदर टेंशन है, हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल बने, आगे जाएं, अपने गोल्स अचीव करें। अच्छा, इंसान में हमेशा एक लालच होती है, जब इंसान एक चीज़ अचीव कर लेता है तो इंसान का दिल करता है कि वो मज़ीद एक और चीज़ अचीव करे, जब वो कर लेता है तो दिल करता है कि मज़ीद कुछ और हासिल हो। आप सभी ने देखा होगा जब हमारे पास एक गाड़ी होती है तो हमारा दिल करता है कि ओह, हमारी गाड़ी काफ़ी छोटी है, काश हमारे पास बड़ी गाड़ी होती। और जैसे ही हमारे पास बड़ी गाड़ी आ जाती है तो साथ ही हमारे माइंड में ये थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि अब एक गाड़ी है तो काश दो हो जाए। इसी तरह से इंसान की लालच बढ़ती चली जाती है, और जो दुनियावी चीज़ों की ये मोहब्बत है वो भी इस तरह तेज़ी से बढ़ती चली जाती है, और कहीं ना कहीं बीच में हम भूल जाते हैं कि
कि हमारा मकसद क्या था, हमारा पर्पस क्या था। सो आज ही का दिन आप सभी के लिए भी ये एक रिमाइंडर है कि अपने उसी मकसद की तरफ वापस से लौट आएं जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। वेल लिसनर, जिस तरह के लास्ट फ्राइडे को हमने एक अहद किया था कि हम पूरा हफ्ता कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलें, हमारी प्रैक्टिस इस चीज़ की होगी कि हम अपने छोटों से शफकत से पेश आएं और अपने बड़ों का ख्याल रखें। सो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रॉमिस को किया है पूरा? सो अगर आपने भी इसको फुलफिल किया है, सो 01157100971 इस नंबर पर जाके आप मुझे बता सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जब आपने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया तो आपको किस तरह से फील हुआ। आई नो जब भी हम कोई भी गलत काम छोड़ते हैं या फिर अपने आप को किसी भी बुराई की तरफ जाने से रोकते हैं तो एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर आपने भी उस फीलिंग को महसूस किया है तो हमसे शेयर करें। सो आज के लिए भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया प्रॉमिस कि अब आने वाले अगले इस हफ्ते में हम किस चीज़ पर त्वचा देंगे और अपनी पूरी कोशिश क्या करेंगे कि हम किस चीज़ की बहुत सारी प्रैक्टिस करें। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि प्रोग्राम में कोई खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम शामिल किया जाए। सो आपको किस तरह के कलाम पसंद हैं आप भी मुझे बता सकते हैं, तो कोशिश की जाएगी कि आपके तमाम तरह पसंदीदा कलाम को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा कलाम है, तो आइए अभी हम वो सुन लेते हैं और फिर जब आप मुझे बताएंगे तो फिर वो भी प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। सो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा कलाम।

लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम? सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई भी पसंदीदा कलाम हम बनाएं अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा, सो सिंपली आप हमें बता सकते हैं 01157100971 इस नंबर पे जाके। सो देयर लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट। जैसे कि है आप सभी को मालूम कि हम हमेशा टीवा डायलॉग का फर्स्ट सेगमेंट रखते हैं थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल, क्योंकि आई फील लाइक एक नए दिन को आगाज़ करने के लिए हमें बहुत सी मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, साथ ही साथ एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो आपके उस एनर्जी के डोज को तो हम म्यूज़िक से या फिर खूबसूरत प्यारे कलाम से दूर कर देते हैं। सो अब ज़रूरत पेश आती है आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देने की। सो जैसे कि आज फ्राइडे, सो फ्राइडे के हवाले से ही आपसे कुछ मीनिंगफुल कोट शेयर करूँगी। सो आज का हमारा फर्स्ट कोट है जो कि एसोसिएट करता है फ्राइडे से ही अगेन। सो आपसे शेयर करती हूँ ये खूबसूरत सा प्यारा सा कोट। So basically, Friday is a day to finish your goals for the week. It is a day to celebrate that which you set out to accomplish at the beginning of the week. So basically, ये खूबसूरत सा प्यारा सा कोड जिम्मेदारी, मेहनत, कामयाबी, इन तमाम तरह चीज़ों को फोकस करता है। सो ये फ्राइडे को सिर्फ काम से भागने का दिन नहीं बल्कि टारगेट पूरा करने के हवाले से फिनिशिंग लाइन मानता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, मोस्टली लोगों का अक्सर मानना ये होता है कि जो फ्राइडे है वो सिर्फ वीकेंड की शुरुआत होता है और वो उसको इस तरह से लेते हैं कि ओह फाइनली अब वीकेंड आने वाला है, सो अब हमारे पास बहुत सा वक्त होगा टू स्पेंड टू योर सेल्फ, टू स्पेंड टू योर फैमिली। लेकिन यहाँ हमारे प्यारे से फिलोसोफर का कहना कुछ ये है कि फ्राइडे का दिन बचे हुए कामों को ख़त्म करने के लिए भी होता है। जब आप पूरा हफ्ता का काम फ्राइडे को मुकम्मल कर लेते हैं तो वीकेंड का सुकून और सेलिब्रेशन मज़ीद खूबसूरत लगता है, क्योंकि आपने उस दिन रेस्ट करनी होती है। सो मेक श्योर कि आपने जो भी टारगेट, जो भी टास्क या एनीथिंग जो आपने मंडे को स्टार्ट किया है, वो आपको मेक श्योर करना है कि क्या फ्राइडे तक आपने अपने तमाम तर गोल्स अचीव कर लिए हैं। क्योंकि आई फील है कि जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तभी इंसान फाइनली मेंटली रिलैक्स फील करता है और फिर वो जाकर सुकून महसूस करता है। सो हमारे शायर का कहना यह है कि फ्राइडे को ना सिर्फ वीकेंड की शुरुआत मत समझा करें बल्कि एक तरह से ये देखा करें कि क्या आपने वो काम मुकम्मल कर लिया है जो आपने मंडे को शुरू किया था, क्योंकि फ्राइडे एक ऐसा दिन भी है जो आपके टास्क को कंप्लीट करने का दिन समझा जाता है।

नमस्ते लिसनर्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कोट। कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कोट और इस हवाले से है आपकी क्या अरा? 01157100971 इस समय के थ्रू हमसे कर सकते हैं शेयर। सो जैसा कि आज मालूम है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के हवाले से ये भी कि मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे ऐसे प्लान्स और न्यू प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रैक्टिस जो आपने इस आने वाले वीक में करनी है। सो जैसा कि हर फ्राइडे हम एक अहद करते हैं कि हम अपने ज़िंदगी से एक बुराई को रिमूव करेंगे और एक अच्छाई को ऐड करेंगे। सो लास्ट वीक का हमारा गोल था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन तीन तरह के कामों को बिल्कुल भी ना करें, जिसमें सबसे पहले कि हम झूठ ना बोलें, सेकंडली हम छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ और थर्ड कि हम अपने बड़ों का एहतराम करें। सो आज के हवाले से इस फ्राइडे का जो हमारा टास्क है वो कुछ यूँ है कि आने वाले इस पूरे वीक में आपने एक एनालिसिस करना है। सो एनालिसिस किस चीज़ का होगा? एनालिसिस सिंपली इस चीज़ का है कि आपने अपने घर के आसपास, अपनी कम्युनिटी में, अपने गिर्दनवाह ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो वाकई ही नीडी हो, ज़रूरतमंद हो किसी भी हवाले से। अब ज़रूरत पैसों की नहीं हो सकती, फाइनेंशियली के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के इंसानों को ज़रूरत होती है। तो आपने इस पूरा हफ्ता ये एनालिसिस करना है, अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करना है और इस बीच अगर आपको कोई एक ऐसा शख्स मिलता है जिससे वाकई ही आपकी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है और वाकई ही वह आपकी मदद का मुस्तहिक है, सो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसकी उस क्यूरी को दूर करना है, उसके मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनना है। सो द लिसनर्स, ये है हमारे आने वाले इस न्यू वीक की प्रैक्टिस। आई होप आपको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगेगी और इस तरह से आप जब मंडे से स्टार्ट करेंगे इस प्रैक्टिस को, आहिस्ता आहिस्ता जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और साथ ही साथ जब भी हम किसी की मदद करते हैं, चाहे वो मदद छोटी ही क्यों ना हो, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, इंसान का दिल बहुत हल्का फील करता है। सो लाजमी इस प्रैक्टिस को करिएगा और मुझसे अहद करिए कि आप लाजमी करेंगे। चलिए आइए लिसनर्स आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोट की जानिब। सो आज का जो हमारा सेकंड कोट है वो भी अगेन फ्राइडे से ही एसोसिएट कर रहा है। सो आवर सेकंड कोट सेज, फ्राइडे नाइट इज अबाउट लेटिंग गो ऑफ द वीकेंड स्ट्रेस एंड एम्बेसिंग द फ्रीडम ऑफ द वीकेंड। सो बेसिकली ये कोड मेंटल हेल्थ, रिलैक्सेशन और काम से निकलकर अपनी पर्सनल लाइफ में होने वाली बहुत सी चीज़ों से रिलेट करता है। सो मंडे से थर्सडे तक रूटीन, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन तमाम तर वजूहात की वजह से दिमाग पर बहुत सारा स्ट्रेस शुमार हो जाता है। सो फ्राइडे की रात एक बाउंड्री की तरह काम करती है जहां ऑफिस या काम का स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो सिंपली इस कोड का मतलब ये है कि फ्राइडे की रात असल में दिमागी सुकून का नाम है, अपनी फिक्रों को भूलकर वीकेंड की आज़ादी मनाने का नाम है। सॉरी लिसनर्स, बहुत सारी लोगों से मैंने ये चीज़ सुनी है और मैंने पर्सनली भी इससे रिलेट किया है कि आप सबने फील किया होगा कि फ्राइडे इज़ मोर हैप्पियर डे देन द संडे, क्योंकि एक्चुअल संडे को हमें ये होता है कि ओह अगेन मंडे आने वाला है, सो अब फिर से वही एक स्ट्रेसफुल वीक स्टार्ट होने वाला है। सो जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि संडे को छुट्टी होती है और हमें अच्छा फील होता है, तो मेरे नज़दीक फ्राइडे की रात को मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि फ्राइडे की रात चाहे कुछ लम्हों के लिए ही सही लेकिन हमारा माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होता है और हम ये सोचते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए हम अपने इस काम को भूल जाते हैं, लेकिन जब संडे आता है तो वापस से हमें मंडे की टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। सो हमारे फिलोसोफर ये कहते हैं हमारे इस कोट में कि फ्राइडे की रात आपकी तमाम तर जिम्मेदारियों से आज़ादी की रात होती है और मेंटली सुकून की रात होती है उस हेक्टिक, उस बिजी और उस स्ट्रेसफुल वीक से। सो वेल लिसनर्स,
سے تھا ہمارا آج کا سیکنڈ موٹیویشنل پلس انسپریشنل کوٹ. کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا کوٹ؟ اور اس حوالے سے اگر آپ کا ہے کچھ کہنا تو 01157100971 اس نمبر کے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. سو دی لسنرز, ایک بار پھر سے بتا دی چلتی ہوں کہ www.radiofaza.com.uk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. سو اس ویب سائٹ کے تھرو آپ کو ریڈیو فضا 97.1 FM سے جڑی ہر طرح کی معلومات مل جائے گی, اور اس نمبر کے تھرو آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. سو فی الحال پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک عدد خوبصورت سے کلام کو شامل کرنے کا, تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا پیارا سا کلام جو کہ نصرت فتح علی خان کی خوبصورت سی آواز میں ہے. تو اس کلام کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے دیوا ڈائیلاگ کا سیکنڈ سیگمنٹ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड ऐप पे। अभी डीवा डायलॉग में वक्त हो चुका है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, यानी कि प्रोग्राम के अगले सेगमेंट के शुरू करने का। सर, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त तक हमारे तमाम तर्मर्द हजरात अपने ऑफिस, बिजनेस या फिर अपने काम काज की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। सो अभी से बच जाती हैं हमारी प्यारी डीवास। सो डेली बेसिस पर ये सोचना कि आज खाने में क्या बनाया जाए, क्या ऐसा बनाए जो पूरे घर को अच्छा लगे। साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है इटसेल्फ, क्योंकि डेली आपको डिसाइड करना होता है कि अच्छा आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। और फिर जब भी हम कुछ भी बना रहे होते हैं, जो कुछ थॉट्स हम सभी के माइंड में आती हैं वो ये कि क्या मैं जो रेसिपी ट्राई कर रही हूँ सब घर वालों को अच्छी लगेंगी या नहीं। और आपको जैसा कि मालूम है कि घर में बहुत सारे अफराद रहते होते हैं, तो हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ को देसी पसंद होता है तो कुछ को कॉन्टिनेंटल। आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी। एंड आई एम श्योर कि ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है जो ना सिर्फ आपके घर में बच्चों को बल्कि बड़ों को सभी को बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि पूरा वीक से हम बना रहे हैं देसी कुजीन, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा हटके, थोड़ा अलग से कुछ नया ट्राई किया जाए। आज मैं आप सभी से एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि ये एक ऐसी रेसिपी है जो नॉर्मली लोग फाइव स्टार होटल्स में जाकर खाना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग एट होम, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये रेसिपी बनाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। बट ऑनेस्टली ये बहुत ईजी है, जस्ट आपको फ्यू स्टेप्स फॉलो करने हैं और कुछ ही इन्ग्रीडियंट्स आपको हैं दरकार। इन सिंपल से मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप मज़ेदार सी कॉन्टिनेंटल कुजीन बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी काम कर रही हैं माई लवली डीवास, तो थोड़ी देर के लिए उस काम को कर दीजिए स्किप, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स। जल्दी से अपनी नोटबुक, कॉपी, डायरी या कुछ भी पेन वगैरह नोट उठा लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए इस रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कुंग पाओ चिकन। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कुजीन है, बट मोस्टली लोग इसको घर में नहीं ट्राई करते। मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसे ही ट्राई करें। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट हम सभी को दरकार हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। कुछ खास नहीं, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, बट अगर आपने इनको मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपकी रेसिपी उस तरह से अच्छे से ना बने। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन 300 ग्राम्स, वो भी क्यूब शेप कटिंग में। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है पीनट्स। अच्छा, आपने रोस्टेड पीनट्स यूज करने हैं 1/4 कप। फिर बारी आती है जी शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम की। आपने 1 कप शिमला मिर्च इस्तेमाल करनी है इस रेसिपी में, लेकिन आपने उसे बारीक कट करके रख लेना है। रेसिपी में शामिल होगा प्याज 1 कप, गार्लिक जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, ड्राई रेड चिलीज 4 से 5 अदद, बारी आती है सोया सॉस 2 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, केचप 2 टेबल स्पून और ब्राउन शुगर 1 टीस्पून। अच्छा, बेसिकली ये रेसिपी थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होती है और साथ ही साथ इस रेसिपी में एक चटपटा सा टेस्ट होता है, इसलिए हम ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि वो तमाम तरह स्पाइसेस को अच्छी तरह से बैलेंस आउट कर दे। अब बारी आती है मजीद अगले इंग्रेडिएंट्स की। अब इस रेसिपी में शामिल होगा कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून और साथ ही साथ नमक और ब्लैक पेपर। अच्छा, नमक और ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, साथ ही साथ
1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मुझे खाने में नमक थोड़ा सा तेज पसंद है। वेल, अगर आपको ज़्यादा नमक नहीं पसंद तो आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। सो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है कुकिंग ऑयल। अच्छा, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल कनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होता है, सो अगर आपको है कोलेस्ट्रॉल का मसला या भी इस तरह का कोई भी डिज़ीज़, मोस्टली लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो आपको मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया करें, लेकिन अदरवाइज़ आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप बासमती घी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इस रेसिपी में अगर हम घी ऐड करेंगे तो उस तरह से रेसिपी नहीं बनेगी। सो वेल लिसनर्स, ये थे हमारे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स, और इन इंग्रेडिएंट्स में मोस्टली चीज़ें तो ऐसी ही हैं जो हमारे घरों पर मौजूद होती हैं, आपको इनके लिए सुपरमार्केट नहीं जाना पड़ेगा। वेल, अगर फिर भी कोई इंग्रेडिएंट आपके घर में नहीं है मौजूद, सो वो आपको सिंपली किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस हो चुका है आपसे तो घबराने की कोई बात नहीं है। 01157100971 इस नंबर पे जाके आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपकी तमाम तरह की क्यूरीज को कर देंगे दूर। सो दे माई लवली डिवाइस, जितनी देर में आप इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को पूरा करती हैं या फिर अपने किचन में जाकर चेक करती हैं कि क्या क्या चीज़ घर पर मौजूद है और क्या आपको सुपरमार्केट से खरीदनी पड़ेगी, उतनी देर में हम एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम सुन लेते हैं और फिर कलाम के उस पर, यानी कि जब हम वापस आएंगे तो इस रेसिपी को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे।

चलिए आइए लिसनर्स स्टार्ट करते हैं हमारी फुल रेसिपी। सो सबसे पहले हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए, और स्टेप बाय स्टेप से ये होता है कि हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाती है। सो स्टेप नंबर वन में हम चिकन को कर लेंगे मैरिनेट। सो इसमें सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन के साथ ही 1 टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, और इन तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि हमारे तमाम तर चिकन पीसेस मसाले में और सॉस में डिप हो जाएं। सो जैसे ही अच्छी तरह से हम कर लेंगे इसे मिक्स, तो इसे 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब बारी आती है स्टेप नंबर टू की। सो स्टेप नंबर टू में हम बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी की सॉस। सो एक बाउल में बचा हुआ सोया सॉस, विनीगर,

केचप, शुगर, ब्लैक पेपर, ये तमाम तरह अज्जा शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख देंगे और हमारी ये मज़ेदार सी सॉस हो गई है तैयार। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टेप नंबर 3 की जानिब। सो स्टेप नंबर 3 में हम अपना चिकन जूस को हमने मैरिनेट करके रखा था, फ्राई कर लेंगे। सो पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और बीच में शामिल कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। चिकन को तब तक पकाएंगे कि जब तक हमारा चिकन बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। सो बस हमने चिकन को हल्का सा फ्राई करना है, तो जैसे ही हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल कर साइड पे रख लेंगे। याद रखिएगा कि बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इस सूरत में हमारा चिकन बहुत हार्ड हो जाता है या फिर उसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा एंड आई एम श्योर खाने में भी नहीं। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज तड़का। उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल मजीद गरम कर लेंगे, चॉप्ड जिंजर गार्लिक, साबित सुर्ख लाल मिर्च, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को कट करके शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब बारी आती है वेजेस की और पीनट्स की। सो अनियन, कैप्सिकम, रोस्टेड पीनट्स, इन्हें भी इसमें शामिल करके तेज आंच पर 2 से लेकर 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब लास्टली इसमें हम पका हुआ चिकन और पहले से तैयार की हुई सॉस का मिक्सचर, इन दोनों को ही शामिल करके अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। सो जैसे ही हम इसे मिक्स कर लेंगे, अब बारी आती है इसे मज़ीद थिक करने की। सो इसके अंदर हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके और साथ ही साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक सॉस बिल्कुल थिक और ग्लॉसी ना हो जाए। सो जैसे ही हमारी सॉस थिक हो जाएगी, सो इट मीन्स कि अब हमारी ये रेसिपी फाइनली अपने इख्तितामी मराहिल को पहुंच चुकी है। सो डना हमारी ये रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी हो गई तैयार जस्ट फ्यू स्टेप्स को फॉलो करके, और इतना बेसिक सा सिंपल सा मेथड था, आपको कुछ भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब आप चाहें तो आप इसे फ्राइड राइस के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ या फिर सिंपली ऐसे ही भी सर्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी मज़ेदार सी हमारी आज की चटपटी सी फ्राइडे स्पेशल स्पाइस किचन रेसिपी। आई होप लिसनर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और इस हवाले से अगर आपकी मज़ीद कोई भी क्यूरी हो या कोई स्टेप ऐसा हो जो आपको ना समझ आया हो, तो आप हमसे 01157100971 इस नंबर पर जाके पूछ सकते हैं। सो इतने मज़े की यह रेसिपी है कि अभी जब मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही थी तो साथ ही साथ मुझे खुद भी काफ़ी भूख लग गई और मेरा दिल करना शुरू हो गया कि जल्दी से लंच टाइम आ जाए और मैं इसे ट्राई करूँ। सो जी लिसनर्स, आप भी इसे लाजमी आज ही ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे तो मैं अपने प्रोग्राम में फ्राइड एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको दोबारा से ये रेसिपी मज़ीद चाहिए हुई तो आप मुझे बता सकते हैं, एक बार फिर से आप सभी के लिए शेयर कर दूँगी। सो लाजमी ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और मज़ीद इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए भी आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। आपको अगर किसी भी डिश की रेसिपी चाहिए तो आप स्पेसिफ़िकली वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो रेसिपी लाजमी दूँ। इसी के साथ ही हमारा स्पाइस किचन का ये सेगमेंट हो चुका है खत्म। सो अब सुनते हैं कोई भी खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम, तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा कलाम सुनना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप बताते हैं तब तक मैं वो कलाम शामिल कर लेती हूँ जो कि मुझे पसंद है। तो आइए मिलकर सुनते हैं बड़ा प्यारा सा कलाम।

वेल लिसनर्स, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई होप आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को एंजॉय किया होगा। सो आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक इटसेल्फ बहुत जरूरी होती है प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। सो देयर लिसनर्स, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। सो स्टे ट्यून विद अस।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड डेथ के लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आप सभी की मेजबान आरजे ज़ैनब फातिमा। और जैसे कि आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कंफर्ट प्लेस कंफर्ट शो टीवा डायलॉग, जो कि स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है हमारी तमाम तर फीमेल्स के लिए, यानी कि उन फीमेल्स के लिए जो कि इस वक्त घर में मौजूद हैं या फिर हैं अपने ऑफिस या किसी भी वर्किंग प्लेस में। सो अगर आप बोर हो रही हैं या फिर आप अपने मूड को थोड़ा सा चेंज करना चाहती हैं, या हमारी वो सभी महिला जो चाहती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके लिए अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाएं, तो आप सभी के लिए ही हमने अपना ये शो पूरे तौर पर डिज़ाइन किया है। सो वेल माई लवली डिवाइस, आप भी हमें अच्छे अच्छे सजेशंस दे सकती हैं कि किस तरह से हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत बनाएं और मज़ीद रिलेटेबल बनाएं, यानी कि आप मुझे सजेस्ट कर सकती हैं कि मैं किस तरह के टॉपिक्स को प्रोग्राम में लेकर आऊं, साथ ही साथ ये भी बता सकती हैं कि आपको कौन सी किस तरह की रेमेडीज़ चाहिए, या फिर अगर आपको कोई भी मेकअप हैक चाहिए हो, सो डू लेट मी नो। साथ ही साथ ये भी कि अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक डिश की रेसिपी चाहिए या फिर प्रोग्राम में किस तरह का म्यूज़िक शामिल होना चाहिए, किस तरह के ट्रैक्स, तो इस तरह की हर तरह की मालूमात आप हमसे शेयर कर सकती हैं। सो अपना ओपिनियन लाजमी दिया करें। 01157100971 है हमारा रबते का नंबर, यानी कि इस नंबर के थ्रू आप हमसे वो सभी बातें कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं किसी भी अपने चाहने वाले से। सो रेडियो फजा 97.1 FM, पूरा ख्याल रखेगा इस बात का कि हम अपने प्रोग्राम को आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करें। सो वेल लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करेंगे। सो जैसा कि वीकेंड है, सो वीकेंड पे अक्सर औकात फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं, या फिर जैसा कि पूरा हफ्ता आप काम काज करते हैं, ऑफिस, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, सो वीकेंड्स का जो मज़े की बात होती है वो ये होती है कि फैमिली को मौका मिलता है सब साथ में एक साथ बैठें। सो अगर आप अपने वीकेंड को स्पेशल बनाना चाहती हूँ तो ये रेसिपी आप वीकेंड पे भी ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि वीकेंड में प्लस पॉइंट ये होगा कि सब घर वाले साथ होंगे तो मिल बैठ कर खाने का अपना ही मज़ा है। सो लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब। सो जैसा कि है हमारे प्रोग्राम का नाम डीवा डायलॉग, सो डीवा से मुराद एक ऐसी आइकॉनिक फीमेल जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी की उन टिपिकल जंजीरों को तोड़कर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद करके दिखाया। सो आज भी हम एक ऐसी ही फीमेल की कहानी आपसे शेयर करेंगे जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट सा और कुछ इंस्पिरेशनल करके दिखाया। वेल उससे पहले सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम जो कि है अली जफर की आवाज़ में। कलाम के उस पर आपसे मैं फुल बायोपिक शेयर करूंगी।

वेलकम बैक लिसनर्स। सो डियर लिसनर्स, आज हम एक ऐसी खातून के बारे में गुफ्तगू करेंगे, यानी कि एक ऐसी इंस्पिरेशनल डीवा के बारे में जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। सो अगर वो चाहती तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक आलीशान महल में गुजार सकती थी, यानी कि बिना अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आए, यानी कि एक बहुत ही पुरसकून और बहुत सिंपल ज़िंदगी। लेकिन इस ऐसे प्रिंसेस ने पुराने तमाम तर रॉयल ट्रेडिशंस को तोड़ा और आम लोगों के बारे में सोचा। अब तक तो आप सभी समझ चुके होंगे कि मैं किनकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, द वन एंड ओनली प्रिंसेस डियाना। सो 1981 में जब डियाना की शादी प्रिंस चार्ल्स से हुई तो दुनिया में उसे एक फेरी टेल कहा गया। हर लड़की उन जैसा बनना चाहती थी, लेकिन इस शाही महल के पीछे एक अकेली और एक उदास औरत थी। सो अगर हम बात करें इनकी निजी जिंदगी की, रॉयल फैमिली के काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट लॉ से और इन्हीं कानून की वजह से डियाना काफ़ी हद तक अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डियाना ने अपनी पहचान चैरिटी से बनाई, उन्होंने एड्स पेशेंट्स के हाथ थामा और दुनिया उन्हें इस नज़र से देखना शुरू हो गई, यानी कि एक गरीबों की मसीहा के तौर पर। इसके अलावा उन्होंने लैंडमाइंस के खिलाफ भी काफ़ी सारी कैंपेन्स की। 1996 में डिवोर्स के बाद अक्सर लोग समझते हैं कि लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन डियाना ने अपनी ज़िंदगी खुलकर जी। लेकिन 31 अगस्त 1997 को पेरिस में एक कार क्रैश ने उनकी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन इस सिंपल सी, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में उन्होंने मेक श्योर किया कि वो हमेशा गरीब लोगों की मदद करें, दूसरों से अच्छे से पेश आएं, और साथ ही साथ ये जो सोसाइटी के रिच लॉज हैं इनको काफ़ी हद तक कम कर दें। इन्हीं तमाम तर खूबसूरत खिदमात के नतीजे में आज भी दुनिया उन्हें द पीपल्स प्रिंसेस के नाम से याद करती है। वैसे कितना अच्छा लगता है कि जब हम दुनिया में कुछ ऐसा करके जाते हैं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें अच्छे खूबसूरत प्यारे लफ्जों में याद करते हैं। हमेशा मैं भी यही सोचती हूँ कि आई विश कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अलग सा मुनफरिद सा करूँ कि लोग मुझे भी इस कदर खूबसूरत अच्छे अच्छे अल्फाज में याद करें। सो ये भी हमारी आज की फर्स्ट आइकॉनिक इंस्पिरेशनल खातून, यानी कि प्रिंसेस डियाना। कैसे लगी आपको इनकी बायोपिक, इनकी निजी ज़िंदगी प्लस इनकी खिदमत?

साथ ही मैं आपके लिए लाई हूँ एक अदद और खूबसूरत सी हमारी डीवा की कहानी। सो बेसिकली ये एक सिंगर हैं और आप सभी इनके नाम से बखूबी आगाह होंगे। सो लिसनर्स, अब बात करते हैं उस आवाज की जिसके बिना पाकिस्तान की मौसीकी बिल्कुल अधूरी रही, यानी कि लेट 19वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। सो एक ऐसी फनकारा जिनका एक सुर पूरी दुनिया में काफी फेमस था। सो आप समझ चुके होंगे कि अगर मैं 19वीं सेंचुरी की बात कर रही हूँ तो उस पर हम किन ही डीवाज की बात कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां, ठीक है। सो उनका ताल्लुक एक बहुत ही स्मॉल सी सिटी से था। सो कसूर में वो पैदा हुई थी, जो कि एक बहुत ही स्मॉल एरिया समझा जाता है, या फिर उस वक्त तो काफ़ी छोटा था, क्योंकि अगर देखा जाए 19वीं सेंचुरी की तो पाकिस्तान के बिग सिटीज़ में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन तमाम दस सिटीज़ का ही नाम आता है, और जितनी भी मीडिया से रिलेटेड एजेंसीज थी या फिर कह लो शोबिज़ की दुनिया, वो सब भी इन्हीं एरियाज़ में काम करती थी। तो आई फील लाइक कि जब आपका ताल्लुक काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से हो, साथ ही साथ आप बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपने फ़न की आवाज़ दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप अगर आप में टैलेंट है तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं जिनकी वजह से आप अपना टैलेंट दूसरों लोगों के सामने ला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेट 19वीं सेंचुरी की, तो उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, उस वक्त आप लोगों तक अपनी आवाज़ का जादू नहीं जगा सकते थे। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उन्होंने उस दौर में काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, जिसके नतीजे में दुनिया ने उनको सराहा। वो ना सिर्फ एक बेमिसाल सिंगर थी, बल्कि 1940s और 1950s की एक बेहतरीन एक्ट्रेस और पाकिस्तान की पहली फीमेल फिल्म डायरेक्टर भी थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम ये था कि उन्होंने 1965 की वार में सामने आके बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत नगमे गाए। खूबसूरत से मोटिवेशनल नगमों की वजह से कौम को काफी उम्मीद, काफी सहारा मिला। इसके अलावा अगर हम उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा चैरिटी कैंपेन्स चलाई, जिसपे उन्होंने गरीबों की मदद की, मुस्तहिक नीडी लोगों के लिए सहारा बनी, और साथ ही साथ अपनी आवाज से दूसरे लोगों को मोटिवेट किया। सो जैसा कि आज प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की थी कि हम एनालिसिस करेंगे और अपने आसपास के दुनिया में किसी ऐसे शख्स को ढूंढेंगे जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। तो अगर आप दूसरों की मदद की बात कर रहे हैं, तो मदद इस तरह से भी हो सकती है कि आप किसी को मोटिवेट करें, किसी को सहारा दें, जिस तरह से इन्होंने किया। सो तो 2000 दिसंबर में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उन सभी की ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कीमती एहसास है, और उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ ये भी हमें सीखने को मिला कि अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद हो तो आप खुद ब खुद रास्ता बना सकते हैं। दुनिया की कोई भी चट्टान आपके सामने नहीं आ सकती, आपके टैलेंट को नहीं रोक सकती। वेल, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है आज के दौर में भी कि वो लोग कहते हैं कि हम अपना टैलेंट लोगों के सामने शोकेस नहीं कर सकते या हम दुनिया को नहीं बता सकते। सभी ग्रो अप, क्योंकि इट्स 2026। आजकल के दौर में सोशल मीडिया की पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप में है कोई भी किसी भी किस्म का टैलेंट या कुछ मुनफरद नई चीज़, तो आप लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचा सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, थ्रू इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। पर ख्याल इस चीज़ का रखना है आप सबने कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों तक आप एक अच्छा मीनिंग, अच्छा मैसेज पहुँचाएं। सो लिसनर्स, इन्हीं खूबसूरत सी दास्तानों के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। सो डीवा डायलॉग का ये सफ़र जो हमने ठीक 10 बजे आपके साथ शुरू किया था, उसे ख़त्म होने में बस चंद ही लम्हात बाकी हैं।
सो वेल लिसनर्स, प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी ये सुबह अभी बाकी है। सो कोशिश करिएगा आज के दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाएं, बहुत सारे चैलेंजिंग काम करें, कुछ नया करें, कुछ मुनफरिद करके लोगों को दिखाएं और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव मकसद की तरफ रखें, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही इस चीज़ का है कि हम अपने लिए भी आसानी पैदा करें और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। पर फिर भी अगर समहाउ ऐसा होता है कि आप किसी के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, किसी का दिल से एहसास करते हैं, किसी को समझने की कोशिश करते हैं और वो आपको गलत समझ लेता है, तो इस चीज़ से कभी भी डिसहार्ट मत हुआ करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आप कभी भी दूसरों का परसेप्शन खुद को लेकर तब्दील नहीं कर सकते। सो इन छोटी छोटी बातों को खुद पर इतना सवार मत करें, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करें, अपनी ज़िंदगी जिए और इसे पॉजिटिविटी के साथ जिए। और जैसा कि हैज फ्राइडे, सो आज के दिन के हवाले से भी अपने उस मकसद को याद करें जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए हैं और आपको एक ना एक दिन लौट कर जाना है। सो वेल लिसनर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने से जुड़े उन तमाम तर लोगों का ख्याल रखिए और मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम का फीडबैक भी मुझे शेयर करिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो आज के दिन के हवाले से सो डू लेट मी नो। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा कलाम प्ले कर देती हूँ, तो ये खूबसूरत सा कलाम सुनते सुनते अलविदा कहती हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

ना मैं लिखू ना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार। Venom,

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: सपनों से।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
9: hayatweddings.co.uk।

मौला न मिलकू न तू लिखे न कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है, बिखरता है वही।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

रंजीत, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

चलिए अब माहौल को जरा संजीदा बातों से निकाल कर मुस्कुराहट की तरफ ले जाते हैं। एक दिलचस्प सवाल, अगर आपको अचानक 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोई कहेगा गाड़ी खरीदूंगा, कोई कहेगा घर बनाऊंगा, कोई कहेगा कारोबार शुरू करूंगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सबसे पहले मोबाइल बंद करके सो जाऊंगा, कहीं कोई पैसे वापस ना मांग ले। लेकिन हकीकत यह है कि पैसा हो या ना हो, इंसान को सुकून, सेहत और रिश्तों की कदर जरूर करनी चाहिए। ज़िंदगी का एक खूबसूरत उसूल यह है कि इंसान को इज्जत दें मगर अपनी इज्जत भी ना भूलें, मोहब्बत करें मगर खुद को ख़त्म ना करें, लोगों की मदद करें मगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके नहीं, माफ़ करें मगर हर बार खुद को उसी तकलीफ़ में वापस ना आने, और सबसे बढ़कर अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ रखें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पार्क फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: You are fame.
7: We are
6: playing
7: Fazan 97.1 FM.

तो प्यारे सामीन, एक बार फिर खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और मैं हूँ आपका मेज़बान। जुमा की नमाज़ अदा हो चुकी होगी और दिलों को अल्लाह के जिक्र से ताजगी मिल चुकी है। और अब आइए कुछ बातें दुनिया की, हमारी ज़िंदगी की, हमारे ताल्लुकात ही करते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ पैसे, कामयाबी और मसरूफियात का नाम नहीं, ज़िंदगी का असल हुस्न उन लोगों से है जो हमारे साथ खड़े होते हैं। माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, शरीक हयात, औलाद, यही रिश्ते हमारी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाते हैं। अल्लाह फैमिली को रिश्ता ख़त्म करने का सबब हर किस ना बनाए। सामिन, एक बहुत अहम बात है कि आजकल रिश्ते अक्सर किसी बड़ी वजह से नहीं टूटते, बल्कि गलत फहमियों की वजह से टूटते हैं। किसी ने किसी की बात पूरी नहीं सुनी, किसी ने किसी के मैसेज का जवाब देर से दिया, किसी ने किसी तीसरे शख्स की बात सुन ली तो फिर दिल में एक ख्याल बना लिया, शायद वो मुझे अहमियत नहीं देता। बस फिर बात कम, फासला ज़्यादा और आखिर में रिश्ता ख़त्म, हालांकि शायद हकीकत कुछ और हो। इसलिए मेरे दोस्तों, सुने सुनाई बातों पर कभी भी कान ना धरें। पहले जिससे ताल्लुक है उसे पूछ लीजिए, बात कर लेने में इंसान छोटा नहीं होता। कभी कभी एक जुमला, यार मुझे ये बात बुरी लगी है, क्या हकीकत है, सालों की गलतफहमी को ख़त्म कर देती है।

अब यहाँ वक्त हुआ है खूबसूरत से ब्यूटीफुल से सॉन्ग का, सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि फजा 97.1 FM आपका अपना रेडियो है।

मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को कहें कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत तो ये है कि आप सामने वाले की खामोशी भी समझने की कोशिश करें, वो थका हुआ है तो उसका ख्याल रखें, वो परेशान है तो उसके आस पास बैठें, उसकी कामयाबी पर खुश हों, उसकी नाकामी में उसका मजाक ना बनाएं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब वो आपसे नाराज़ हो तो उसे हराने के बजाय उसे मनाने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्तों में मुकाबला नहीं होता। रिश्तों में ये नहीं देखा जाता कि पहले माफ़ी कौन मांगेगा, पहले ये देखा जाता कि रिश्ता बचाने के लिए पहल कौन करता है। जरा सोचिए, घर में कोई आपके लिए रोज़ खाना बनाता है, आपके कपड़े संभालता है, आपकी फिक्र करता है, आपके आने का इंतजार करता है, लेकिन हम उसे कितनी बार कहते हैं आपका शुक्रिया। हम बाहर से किसी रेस्टोरेंट में मामूली से अच्छी सर्विस मिले तो कहते हैं थैंक यू सो मच, लेकिन घर में जो इंसान हमारी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए रोज़ मेहनत करे उसे कभी कभी एक शुक्रिया भी नहीं मिलता। तो आज से एक छोटी सी आदत बनाएं, जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है उसे बताएं कि आपने उसकी कोशिश महसूस की है और उसका शुक्रिया अदा कीजिए।

0: प्यार दोस्ती, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता।
1: दोस्तों एक सवाल आपके लिए, अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त आपसे नाराज हो जाए और आपको लगे कि गलती दोनों तरफ से हुई है तो आप क्या करेंगे, पहल करेंगे या इंतजार करेंगे कि पहले वो फोन करे? मेरा ख्याल है अगर रिश्ता कीमती है तो अना को थोड़ा सा पीछे कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम एक हेलो नहीं करते और कई साल का ताल्लुक खामोशी में गुजर जाता है। रिश्तों में ईगो कम करें, एक लफ्ज है ईगो, ईगो मानी अना। ये छोटी सी चीज़ बड़े बड़े रिश्ते ख़त्म कर देती है, यानी मैं क्यों फ़ोन करूं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं क्यों बार शुरू करूं, उसने मुझे पहले मैसेज नहीं किया और फिर दोनों तरफ खामोशी। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं, दोनों बात करना चाहते हैं, दोनों इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए बात नहीं करते कि पहल मैं क्यों करूं। अरे भाई, पहल करने वाला कमज़ोर नहीं होता, वो रिश्ते की कदर करने वाला होता है।

अब जरा दुनिया की बात करते हैं। और सामेन, जिंदगी में सिर्फ रिश्ते ही नहीं, अपने आप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हम दूसरों को खुश करने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने वक्त की कदर कीजिए, अपने मकसद पर काम कीजिए। हर शख्स को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, लोग आपसे खुश हों या ना हों, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका दिल साफ हो, आपकी नीयत अच्छी हो और आपकी मेहनत सच्ची हो और आप किसी का हक ना मारें। आज की बात अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बात को दिल पर लेना भी ज़रूरी नहीं और हर गलतफहमी को रिश्ता ख़त्म करने तक ले जाना भी ज़रूरी नहीं। कुछ बातें छोड़ दीजिए, कुछ लोगों को माफ़ कर दीजिए, कुछ रिश्तों को दोबारा मौका दीजिए और कुछ मामलात अल्लाह के हवाले कर दीजिए। दिल बहुत कीमती है, इसे हर छोटी बात का कब्रिस्तान ना बनाएं। मेरे अजीज सामीन, क्यों ना आज हम एक खूबसूरत काम करें, अपने किसी एक ऐसी अजीज़ को फ़ोन करें जिससे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई। बस इतना कहें, यार काफ़ी अरसा हो गया बात नहीं हुई, सोचा आज तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ। ना कोई लंबी तकरीर, ना कोई शिकायत, ना पुरानी बातें, बस मोहब्बत। क्या पता आपकी एक कॉल किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले। और किसी से नाराज़ हैं तो याद रखिए, नाराज़ी रखना आसान है, रिश्ता निभाना हिम्मत का काम है।

तो मेरे प्यारे सामीन, अब जरा बात करते हैं उस एहसास की जिसका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो एहसास है मोहब्बत। मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं, मोहब्बत वो किसी की इज्जत करने, उसकी फिक्र करने, उसे समझने और उसके दुख को अपना दुख समझने का नाम है। मोहब्बत में सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मोहब्बत ये भी पूछती है कि तुम ठीक हो, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, तुमने खाना खाया, तुम्हें मेरी किसी बात से तकलीफ तो नहीं। ये छोटी छोटी बातें ही मोहब्बत को बड़ा बनाती हैं।

मोहब्बत की बुनियाद इज्जत होनी चाहिए। जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उसकी इज्जत करें, उसकी राय की इज्जत करें, उसके जज्बात की इज्जत, उसके वक्त की इज्जत, उसकी हदूद की इज्जत, क्योंकि जहाँ इज्जत ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM। मिलते

मोहब्बत का दूसरा उसूल है एतमाद। मोहब्बत में हर वक्त शक नहीं होना चाहिए। अगर हर बात पर सवाल हो, कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, ऑनलाइन क्यों थे, जवाब देर से क्यों दिया, तो ये मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़हनी परेशानी बन जाती है। मोहब्बत में एतमाद होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बात वाकई परेशान कर रही हो तो खामोश रहने के बजाय मोहब्बत से बात करनी चाहिए।

0: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
1: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
0: लासा ट्यूशन सेंटर?
1: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
0: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
0: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: You are safe. We are playing. Fazan 97.1 FM.
5: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल है, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you are running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: It's commercial time.
3: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
4: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
3: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
4: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
3: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
4: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
4: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है
3: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
4: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
5: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
4: Peshawari Dera.
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Huzza 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
12: सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: पर ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
4: Attention,
5: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
7: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
6: सलासा ट्यूशन सेंटर?
7: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
6: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
7: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
6: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
8: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
9: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: Ya फिर इंग्लिश और अरबिक तो सुनते रहिए
1: फैजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 Alfred Denton Road, Nottingham, या अभी राबता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

कार्यक्रम रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

मात भी देते हुए। शौकी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें। आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: Sunte rahiye Radio Faza 97.1.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.